आप जी इस स्थान तों अमृतमयी बाणी दी लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करदे आ रहे हो। वडहंस राग गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पावन शब्द जो आप जिया ने सरवन कीता है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 557 दे उपर सुभाईमान है। सतगुरु महाराज जी ने इस पावन शब्द विच गुणवंती और अवगुणवंती की गल कीती है, सुहागण दी ते दुहागण दी, सुचज्जी दी गल और कुचज्जी दी गल कीती है। जां इस तरह समझ लईए कि गुरबाणी सानू जीवन जाच सिखाउंदी है, पर जीवन जीवन दी जाच ताही आएगी जे शब्द दी विचार होएगी। बहुत ऐसे सज्जन मित्र मिलते ने जिहड़े आखते ने कि असी शब्द जदों सुनते हैं सुनते लेंदे हैं पर उदे सानू अर्थ समझ विच नहीं आउंदे कि वो शब्द सानू समझा की रहा है, उस शब्द विचों सानू सिखिया की मिल रही है, मत की मिल रही है, समझ नहीं आई, सिर्फ सुनिया है, सुन के रस ते बने पर समझ नहीं आई।

मोह निर्गुण सब गुण तेरे हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाही।

0: धरती मंडला कप मीठा सर्व सुख पाऊ मन उठा।
1: जिसने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया।
0: गणत सापनी दे राज खात पीत बरते नंदला।
1: मान कच बोर साले अज्ञानी मन रो।

0: गुरुगोरख मन माये
1: प्रसाद सुगंधतन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे।
0: हे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन अंदर।
1: हे प्रसाद संग सुख बसनाय आठ पैर सिमरो तिस रसना।
0: हे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याए ध्यान जोग।
1: हे प्रसाद पाठ नंबर हंडावे चेतियागत अवर लुभावे।
0: हे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस।
1: हे प्रसाद की सबको मन ने मुक्ता को जस रसन बखन ने।

0: संत के दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगे मिले सुजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है।
0: संत के दुखी की

अपेतरसपयोगी तरसपया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा

अजुनी सै भंगुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सै भंगुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख

ते हर हर रूप समासी से तन जिन त्याया जी जन नानक तन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनक करहर पूजा जी तब तापै जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़ै वो सिमरत सास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे अर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुदे आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करें सोई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जनोई आसा महला चौथा तू करता सच्यार मैंडा साई जो तो पावै सोई थीसी जो तू दे सोई ओ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमोलादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माए तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल वियोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जनाए है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन अर सेविया तिन सुख पाया सहजे अर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोई

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सो कहो टल गुरु सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए।

गुर सागर रतनी पर पूरे अमृत संत चुग है नहीं दूरे हर रस चोग चुग है प्रभ पावे सर्वर महंस प्राणपत पावे

जुगो जुग अटल दीन दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझे रहबर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर रात्रि वेले दे दीवाना अंदर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वालेओ, सतगुरु जी ने बड़ी अपार बख्शिश कृपा वरताई है जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालेओ, जिथे गुरु के कीर्तनियां पासों सतगुरु जी की पावन बाणी कीर्तन रूप विच श्रवण करदियां बाणी दा रस बाणी दा आनंद माण रहे सां, जो लड़ीवार गुरु इतिहास दियां विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों श्रवण करदियां हो, उन्हां चल रहीआं लड़ीवार गुरु इतिहास दियां विचारां दे नाल सांझ पाईए। कल दे दीवाना अंदर आप संगत ने इथों क तक इतिहास सतगुरु जी का श्रवण किया सी कि धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कोल काजी सलारदीन जो सतगुरु दे दर्शन करन वास्ते पहुंचिया, उन्हें गुरु साहब दे अगे अपने मन दे संशयां नूं रखदिआं होइआ सवाल रूप दे विच गुरु पातशाह नाल बचन कीते भी तुसीं अपने दर ते आई हुई सिख संगत नूं इस तरह असीस दे के झूठ क्यों बोलदे हो। फिर धन गुरु कलगीधर साहब ने उहदे सवालां नूं सुण के ते जवाब दिंदिआं कहा भी जिवें एक मोहर तैयार कीती जांदी है, वो तैयार कीती हुई मोहर नूं जदों लगाया जांदा ते फिर उहदे अक्खर सीधे बणदे ने, ते जदों तैयार कीती जांदी है उहदे मोहर उपर अक्खर जिहड़े ओह उल्टे लिखे हुंदे ने। इसे तरह जदों गुरु का सिख कोई भी मनुख गुरु दर ते आउंदा आ के मस्तक अपने नूं गुरु चरणा विच रखदा, गुरु पातशाह दे चरणा ते रखिया होया मस्तक जिहड़ा वह मस्तक दे भाग गुरु आप बदल दिंदा है। इउं कह लो भी गुरु आप तरस करके ते उन्हां कर्मां नूं उन्हां भागां नूं सिद्धियां कर दिंदा है। काजी सलारदीन सुन के जवाब बड़ा प्रसन्न होया, मलक पातशाह कोलों बख्शिश लई। इस तरह धन गुरु कलगीधर साहिब जी ने उत्थे सिख संगतां दे सामने उपदेश बख्शिया, असीसां दित्तियां, ते सारियां सिख संगतां फिर सतगुरु जी कोल मालक दे दर्शन करदिआं होइआं दीदार करदिआं होइआं दर्शन कर करके ते अपने घरां वल नूं वापस परतदियां ने। अगां किवें तां गुरु कलगीधर पातशाह जी सारियां सिख संगतां उत्ते कृपा वरताउंदे ने और किहड़े किहड़े उपदेश ने जो सतगुरु जी आप बख्शदे ने, आओ इतिहास दे अगलेरे पन्नियां नूं विचारन दा यतन करिए। विचारन दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन, अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण, मालक जी आप रसना उत्ते वरत के पावन इतिहास और गुरबाणी दी विचार सतगुरु आप करवा लैण,
ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

हे सच्चे पातशाह जी, उस वेले तो मैं अपने मन दे अंदर ये प्रतीत, अपने चित विच ये प्रतीत रखी हुई है, तो उदों दी ही ये जिहड़ी विचार है वह मैं धारण की हुई है, भी कदे भी पुरश का मूँह नहीं।

गुण गावो गोपाल राय रहाओ, वड़े भाग पेटे गुरुदेवा, कोट प्राद मिटे अर सेवा, चरण कमल जा का मन रापै, सोग अगन तिस जानना ब्यापै, सागर तरिया साधु संगे, निरपौ नाम जपो अर रंगे, पर धन दोख किछ पाप न फेड़े, जम जंदार न आवे नेड़े, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरणाई।

तैता हथरथ पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजकर जिन किया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मा वंत ज्ञान जानी अकल गत गुर परवान हर हर दर्श समान हर हर दर्श समान आत्मा वंत ज्ञान जानी अकल गत गुर परवान जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध सुथान पहर सील सनाहो सकत बिदार कहो कीरत काल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार दृष्ट तर्त तम हरन दहन अग पाप परनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वास करन शरण जाचक प्रतपालन आत्म रत संग रहन कहन अमृत कल डालन सतगुरु कल सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरै गुर जग

चित चित मोर दास कहूँ पर कह भी न सको सर्व चिंत दुपास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा। जब गुरु देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख